0: साह्रै मिठो कुरो सम्झायो हौ साइला।
1: अब अहिले थरी थरीका चिसो थरी थरीका कोला खोइ बता गयो धारा बता गयो
0: बोतलको पानी न त पुरा खाँदिन।

noi. LG-le le ai, noia LG Essential Series. अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एसी को कंप्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ हर एक घर को खुशी घर घर में LG LG लाइफ्स गुड.

0: भने बढी साइकल लिएर गयो।
1: साइकल लिएर जाँदा जमाना उहाँ मोटरसाइकलमा पुगिसकेछ। एउटा मोटरसाइकल किन्देऊ, बुहारी ल्याएर देखाइदिन्छु ल।
0: किन्देऊ ल।